अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा कर एमजी गाड़ी में रखी गई। और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका।

0: camera and action!
1: आदि वो लोग कुछ शूट कर रहे हैं।
2: हमारे बिना शूटिंग ऐसे कर रहे हैं।
3: ये तो अपना गाना। या कम ऑन।
4: बाल की शूटिंग हमारे बगैर।
5: आदि

में ताकत भी आई, जो ताकत भी आई तो जुरात भी आई, मोहम्मद जो आए तो रहमत भी आई, जो रहमत भी आई तो दौलत भी आई, जो दौलत भी आई तो बरकत भी आई, जो बरकत भी आई तो नियामत भी आई, मोहम्मद की शान रिसालत भी आई, सरे पुश्त मोहरे नबूवत भी आई, बड़ी बात ये है शरीयत भी आई, विलायत भी आई, करामत भी आई, सारी दस्त दामान ईमान आया, मोहम्मद के आने से कुरान आया कि मोहम्मद

सरे अर्श शहनाइयां बज रही है, पए मुस्तफा महफिले सज रही है, मसरत के शह को पयाम आ रहे हैं, खुदा की तरफ से सलाम आ रहे हैं, सजा बाग जन्नत मोहम्मद की खातिर, जली शमे रहमत मोहम्मद की खातिर, हर एक हूर जन्नत की दुल्हन बनी है, सरे राह मशा

जिसने देखी एक झलक रुकी वो शैदा हो गया, एक नजर पड़ते ही हर बीमार अच्छा हो गया। कैसा ही तूफान हो लेकिन पार बेड़ा हो गया, या मोहम्मद उसका हर गम से कनारा हो गया कि जिसके सर पर आ

गुनागारों की बख्शिश की कोई सूरत न थी, करबला में लाज रख ली आपने ईमान की। बख्शिशे उम्मत पे जब शर्ते शहादत लग गई, मरहबा ए फातिमा के लाल हुसैन इब्ने अली, दे दिया सर।

अपना वाली है वही जो साहिबे मेराज है, जिसकी नालेने मुबारक अर्श की सरताज है। गम के हाथों मेरे मौला जिंदगी का राज है, एक नजर की हस्ती है इबरत फकत मोहताज है, कि तुमने जिस कतरे को

के अस्वद के जिसको चूमते थे खुद मोहम्मद हरम की जान है ये संगे अस्वद मलक करते हैं इस पर नाज बेहद हमारा भी ताल्लुक है हरम से हमारा फर्ज

0: दिलों को साफ करो, काबे का तवाफ करो। चलो चलो हज का महीना आ गया,
1: चलो चलो हज का महीना आ गया।

0: चुटकी कहेंगी। अपने आप को बहुत चला।
1: देखो रवि, बर्दाश्त की भी हद होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे चुटकी मत कहा करो, अब मैं चुटकी नहीं हूं।
0: अरे मैं तो अब तक बेखबरी था। सच कहती हो पंजाब की रेशमा, अब तुम चुटकी नहीं रही।

बिनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का। ओ मदर, प्लीज लिसन टू यू ऑल द बिगनेस टू ऑल थ्रू इन्फ्लुएंस ऑफ अवर थॉट्स टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ राइट। We wish for a true glimpse of your heart, with the desire of power. It is you who have taught the world that jo bhi yah aaya hai, ek din usna hai. He who has come must leave. Inspire us to understand. We need your help, O Maa.

0: सब सुनी कल्याण तुम बिनती सुनो सबकी कल्याण करके हार करो दुर्गा हार करो
1: सुनो

0: तब तू मन मेरा हो तुम सबके तुमसे आशा है दर्शन हो तेरे सबकी आशा है मन मेरा हो तुम सबके तुमसे आशा है क्या मेरा उसका ये अपना पराया क्या
1: जो करती